मन अनदिन अनग्रह जियो, हर पायड़ा वड पा गई मेरे गोविंदा, नित लैला हा मन हस जियो। हर आप उपाय हर आपे देखे, हर आपे कार लाया जियो। इक खावे बस टोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे तख्त बहे नित सुखिए, इक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा। हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा। गुरपुरा अलख लखाही जियो, हर हर नाम परदासिया।

जियो। आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा, हर आप खेले बहुरंगी जियो। एक ना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा, एक नगन फिरे नग नंगी जियो। आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा, हर दान देवे सब मंगी जियो। भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए क्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले।

जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुनिवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरमेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई।

इन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हों मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हों मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, क्यों प्रमी है प्रम किसका होई, जहाँ जल थल मैयल रव्या सोई, गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई, जिस राखे आप राम दयारा, किस नहीं दूजा को पहुँचन हारा। रहाओ सब में वर्ते एक अनंता, ताकू सुख सो होए अचिंता, ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता, मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा, जैसा बीजे तैसा खासा, देख दर्श मन

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पायो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द है।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ।

सब पूरन आशा, सिमरो दिन रहन सास गिरासा, जिस प्रसाद माया सिल्क काती, गुर प्रसाद अमृत बिख खाती, तो नानक इस्ते किछ नाही।

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तब हराए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का।

हजन शीत का लाह सुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख नहीं पति।

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव ज्यो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम ज्यो सुपने होए बैस।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस भोग कर।

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

पियो प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहा विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुग

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा।

0: आया मरम तुम्हारा गुर ते पाया सतगुर ते दृढ़िया इक एक है नानक दास हर हर हर ते कै।
1: गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा व्यापत हरख सोग विस्थार व्यापत सुर्ग नरक अवतार व्यापत तन निरतन पेक शोभा मूल व्यादि व्यापस लोभा माया व्यापत बहु प्रकारी संत जीवे प्रभ ओट तुम्हारी रहाओ व्यापत अंग बुद्ध का माता व्यापत पुत्र कलत्र संगराता व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता व्यापत रूप जोबन मदमस्ता व्यापत पूम रंक अररंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा व्यापत सेज महल सिगार पंच दूत व्यापत अंधियार व्यापत कर्म करे हों फासा व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा आचार व्यवहार व्यापत इन जात सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात संतन के बंधन काटे हर राय ताको कहां ब्या पैमाए तहु नानक जिन तू

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होठ सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग।

दुख रोग कटो ना व्यापे, अमृत नाम हृदय हर जापे, पार ब्रह्म परमेश्वर त्याये, गुर पूरे ते ए मत पाये, रहाओ करण करावन हार दयाले, जी जम सगले प्रतपाले, अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरपूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका

आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जते भगवान। आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो।

बिचर आ गया पिचर भोग भोग जले न पाये राम स्नेह तिरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत पाग

पूरे सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चर

रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाता तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाता सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त

आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिस

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम का रीत झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा।

के अघकोट संप्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कह हृदय वसे भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जा का मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जा के हर तन सो सच्चाओ गुरपूर कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन

हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे, हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे, मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, राख लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

अनेक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानुक जपै नहीं नाम। कहो नानक जा को कहे दयाला, साध संग मिल पजै गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, कल कलेश गुर शब्द निवारे। आवन जान रहे सुख सारे, पै दिन से निरपो हर के आया। साध संग हर के गुण गाया, रहाओ चरण कवल रिद अंतर तारे। अग्न सागर गुर पार उतारे, बूढ़त जात पूरे गुर कांडे। जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी। जिस पेटत गत पई हमारी, गौड़ी महला पंजवा। साध संग ताकी सर नहीं परो, मंतन अपना आगे तरो। अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हौ बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे।

तम पर स्वामी सगल कथा के अंतर जामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सतरास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम भी होन सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम भी होन त्रिग जे बिगानी रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सुमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु दिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मलमंता शोध उपाव एक टेक रास महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नगर करे। गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल थल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस्के

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

कर कृपा प्रभ बंदन छोटे, चरण कमल की दीनी ओटे, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की रह जननीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता।

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए मन बाँचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुँह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस तरह सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बजे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनित बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुर सोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम तेस नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे।

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, काट काट अपना

चोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संग ते गोष्ट हो।

आद जुबाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वदताप, इन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राखे।

साध तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल ना उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आज पैर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांस पाई गुरु गोविंद पाई। पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पे कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करतारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कह मिटे तुम्हारे नाए, एकक संग हर हर गुण गाए, रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सों सो रचे जिस साध का मनता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभु मेरा बिसरत नाही।

मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पए आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग गए।

जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, कर्म कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पुता।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत में।

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण दहो पू

हर तेतन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिल रहनी है, कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते।

सब सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहाँ दिखायो। खंड ब्रह्मंड का एक कोठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैथ जायो। एक है कनक अनक पांच साजी बहु प्रकार विचायो। कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्त्व मिलायो। गौरी महला पंजवा औद कट

हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहर न होए गो फेरा। अंतर जाने पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास तेरी सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पन्नवा, रास्ता

खेद करें हर बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कत हो नाही। एक बात सुनता

गुरका शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा।

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप्रम।

मोहयो उन मोहनी बाला उसके कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण करो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो गिरी नानक दा।

कदम सुहेले, सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। बरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन्म मरण को

है जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

संगार पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हरंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

संग तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किस नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ हम जन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी

ईंट ऊंट प्रभ तुम समरथा, सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको, हर जने चले हमारे साथे। निर्गुण आरे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जाके, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल कराके। गौरी महला पंजवा सह समायो देव, मोको सतगुरु।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

सर्व सुखदाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्याव

हर भगत बिना जीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जप इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उज

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

लक्ष चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध स्यान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जन दुख ना व्यापिये जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को प्रभु।

तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुष पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसै जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिया रहाओ, जो ते साफ ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हो दयाल सतगुर अपना, ता ए मत बुद पाइए, मेरे मन नाम ले जम बंके छूटे, सर्व सुखा सुख पा

भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं पाया, मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

आवे दुख में पंख पहान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल। कर सेवा तू साध की हो जाती है जम जाल। होम जग तीरथ किए दुख हो में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना होए।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग दौड़ी माल।

सिया सतगुर सदब समाया रहाओ लाठी फूक त्रिशन सब लाठी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे तरयो मन जीतो जग सारी त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर दोलन ते अब चूके अकुट खजाना सतगुरु दिया तोट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाए पर्दा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पर आई कहो ना जाई एहो अचंबो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पहे बिगाता गुर निधान हृदय ले राखिया गौड़ी माला मैला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे मां पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लया तीन पवन की लखनी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां स्थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूरन होत न कामा जल तो कभू न बूजत सगल बिरसे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की

हर दिन अवर क्रिया विरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाखर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा।

नानक की बेनंती हर पै अपना नाम जपावो। रागोड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वचल तेरा।

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो कोठी पंडित वेद खोजंता जी।

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग कुमारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

कृत सोजी मन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जा।

मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एओ खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एन इस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता से ए विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग देख ताक उठतावे फुगत मुकत का।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पही सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत है समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

लोए नारी पुरुष सबाई लोए रव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मोको एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवे खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे सा साचा मुक्त पेर क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार सात पुरधार है रहाओ जिसके अंतर सात वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सब एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैरच रह ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम सुपाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला सीमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुरु सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथे नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ अंतर बार एको जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दी सह तो आस निराशा काम क्रोध बिख भूख से आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर रस तारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलख अपेवा जय जय देखो तै तै साचा दिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीने सो तप विचारे साच हृदय सच

वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है। रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी। दिन गुरु पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे। दिन गुर अंत ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे। दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी। प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत। लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत। सहस बाहो मद कीट में खासा, हरनाकस ले नखो विदासा। दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे। रकत बीज काल नेम विदारे, दैत संगार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, ऐनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पागे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता।

सेवा एक न जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जार है, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृप्त न कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता, गौड़ी मैला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसार है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, सिस को वाहो वाहो जे वाट दिखावे, जिसको वाह वाह जी शब्द सुनावे, जिसको वाह वाह जी मेल मिलावे, वाह वाह जिसको जिसका इहो जियो, गुर शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं पत पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकर।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख तोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ। गुरमुख विच्चो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुगचारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुनाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम दंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन से मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया कर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, किस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडपागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई, हौ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत संगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना चिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू आपे बख्श।

गुरपुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड पागी गुरु।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनों बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किच कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाओ अपदा जाए तावत मनुआ आवे खाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सोना।

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे है। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जा के एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा।

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच तर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु न तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अर्तारे रवसस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बर्त अर्पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगतरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी।

अरे हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन में उदरे कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जा।

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवें साकत नाम बिसारी, एक निमक जो

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ, रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, गुर के बचन जागे।

जन्म जन्म की हूँ मैं मलहरों, किस गुर को चुलाओ पाखा, माँ अगनते हाथ दे राखा, किस गुर के गह टोवो पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख।

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की और संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमो

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाभ तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा खनी ना आवे। नानक सासन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसें।

गुरमती सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सा तन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

सबदे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे, सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे, सतगुर मेली ता फिर रावी, बिगसी अमृत बाणी, नानक सा तन ता फिर रावे, जा तिसके मन पानी, माया मोहनी नी करिया जियो, कूड़ मुठी कूड़ियारे, क्यों खूले गल जेवड़िया जियो, बिन गुर अत प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे, किसी का सो होवे, पुन दान अनेक नावन, क्यों अंतर मल तोवे, नाम बिना गत कोई न पावे, हाथ निग्रह बे बाने, नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम ले वो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोह खुआई कूड़ विगुति ता फिर मुत्ती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अंदिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मिलाए बिन

कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए, यो मिलिए माए, कासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए, कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाए, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमति चित लाये, सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर भर

गुर शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक काम।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन पिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमती रंग लाए एहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरै।

अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौ निद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीवत्या यों

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसै कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमति तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची। विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो। आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना। आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे। हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहारे।

आए सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रह लिवलाए नामे उपजय नामे बिनसे नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाये आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिराजियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिराजियो बिख्या लोभ लुवाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चुकलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुखे दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

सिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेशा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूत ठाउ गवाया अनहतवा जे वजह कर मैं फिर संग सेज विछाई दिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

वे जा साध संत इकत्र हो गए तहा तुझे त्या वे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो।

कपेन दाना जमकाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फल्या।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आराधिये जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान।

बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला, दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला, बिनवंत नानक।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सत गुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कच व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुरग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनक

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

0: और पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओ आ महली पावे तू बासा।

अधमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो।

आप अवर नहीं हो, हो अनहार होत सद आया, हो आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस जे

जनिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो तिसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पवजल करना यैया जन्म ना आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म ना हारिये गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलियो सब कोए ताको मा

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनब स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परे। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जप।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप युगादि।

जतकत ओही समाहे, पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

सभागा चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

मिटे तुम्हारो, राम नाम से कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया, चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत। पौड़ी। निन्या जानो दृढ़ सही,

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढो जे होवो सो प्रसन्न ना कह हा।

नानक मनो न बिसरे गुण निध गोविंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की जाते बिरथा न कोए।

पावन बिन नावे सुख नाहे तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक न होती तिन्हों दर जे हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहे नाही जो सगल त्याग एके लपताही ठहक ठहक माया संग मुए हुआ कै कुशल न कथु हुए। ठांड परी संतें संग बसिया।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सक।

गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे, हों आवे जाए। टहत टहत अब टह परे, साध जना शरण आए, दुख के फाहे।

होए। मणि मिटाए जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभु पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता कांस्यों प्रीत कर गुण निद गोविंद राए फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जोबन ने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच साव

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते

दुख सुख हुआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। हुआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विधिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो। याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्र

हर संग है नानक काय दुराए पौड़ी। वाह वैर न करिए काहू खट खट अंतर ब्रह्म समाऊ वासदेव जल थल में रविया गुर प्रसाद विरले ही गवया। वैर विरोध मिटे ते मनते हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते वर्ण चिन्ह सगले ते रहता नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बिहानिया साकत मुगद अजान रड़क मुए जो त्रिखावंत नानक कीर्त कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बस्यो रिद माही ओवा की राड़ मिटत बिन साही। राड़ करत साकत गावारा जिन ही है अहं बुद्ध विकारा राड़ा गुरमुख राड़।

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करे चतुराई संग तुहारे एक ना जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुट तै होए आनंद ते, हौ नाही तै आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संतै संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत्। लाहा माया कारने दैद स्टूडेंट जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे

खरा दिलासा गुरदिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे अक्षर कर कर वेद विचारे अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना अक्षर नाद कथन वख्याना अक्षर मुक्त जुगत पै परमा अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा दृष्टमान अक्षर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती पुस्तक कह न जाए।

एक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय।

पंजन गुरुदेव बंदत सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कले स्तन माय मिटावो। सिमरो जास विसंगर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकी महिमा गनी नावे। ताकी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

लता नाम की महिमा संत हृदय वसे है, संत प्रताप दीर्घ सब नसे, संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ध्याय है। नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र स्मृत वख्यान, जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरया।

पुन दान हो मैं बहु रत्ना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पासी, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव, महा उदास कपि सरसीव, अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन और रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहा होए काची वीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे, पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपाव दर गैनी सिजे, छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे, जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तो कह बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना।

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्त तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मलहरिया।

बीज है जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निद पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे करे अथाह। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहो जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे।

नमस्कारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

अनर्थ गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटम्बर

मतलब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साफ साफ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस्त है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।

होत साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस गुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारदम। साध के संग पाए।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरे, साध कै संग नरक पड़ हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

सदासमदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट बेसपू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

नानक आप अलिपत रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजो नी फिरे।

नानक सब किस प्रभु के हाथ। कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस ते क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिख्या में रके, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा जिस

गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन।

अष्टपदी, जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सो जन नानक दरगह प्रवान। कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे।

ए सब इसको सुख नाही कोई। जब ए जाने में किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी नीत तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।

रचया समाए, आप उपदेश है समझे आपे रचया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार। उसके तिन कहो किस होए थान सनंतर एक कैसोए, अपने चलत आप करने हार कौतुक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना।

और अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे है, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खेंटे करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे,

संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पूजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना त्रिष्ट कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार, प्रभु की उस्तक करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास, सब कछु वरते तुसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक, तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन कोई क्या भगवान, जिस कह दिए रह।

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचे कोए। तिस दिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है। तनमंता होए क्या को गर्भ, जा सब किश किसका दिया दरबै। आप सूराजे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। जे को होए बहदा पार, किस देन हार जाने गावार। जिस गुर पर साल तू तहो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखान नाल चढ़तरे, प्राणी गुरुचरण लगत निस्तरे। ज्यो अंधकार दीपक करगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख कर देवन हार, अवर त्याग तू किसे चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन बख्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पथ से ती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जब मान लो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाभ के संत संचाल, अवर त्याग दिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगे सोए। तो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाये, साध संहर की संगाये। अनेक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाये अमृत रस चाखे। ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवालन हार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी। पर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए। सच करनी सचा की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी।

पर सब पाप मिटावे। अवर से आनक सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर वचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर कै गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेबा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मित करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस्ता वह जन कोए अमृत पी वह अमर सो होए उस पुरख का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हरा एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वर्ताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निर्पो हो बसे सगल व्याद मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा फाद के संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरत दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बो दो हर कह नाए दैज स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा के हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ कहो बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सात वेद विचारे। हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकफैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास हर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कै मस्तक लेख। एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी पगति लाए। हस्तपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत पगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों

जन्म जन्म का टूटा गांड है, गुरपुर तब यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन के आया। साजन संत करो यो काम, आम त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए सरिय संसार, बिन भगती तन हो सी चार, सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जाप पाए विश्राम, सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेक दर्श सुख होए, मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दी जय कर मया, गुरु प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संत दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर कृपाल, आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे सो हो पुनीत, भगत पाए लावे मन हित, हम निर्गुनियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एवं कचना दृष्टि ताप पाप तुम तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत जब आपन आप तार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

कहिए चेरा बिस्मर बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहा किसे व्यापत माया आप उसको आपे आदेश त्यो

बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार।

पाप पुण्य तह परी कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंसावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ख्यान आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एक को पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए सुनते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस तज अगर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सोच सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अन दिन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उद्धार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साज परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बौर न आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए निरपौ जपे सकल पौ मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन देखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सुहोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पे अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रगटी था नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए
सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत करण माए आकाश दयाल सर्व लोक पूरन प्रताल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर्य खत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार सब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस तब ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस नहीं मिलाए कौन निकट कौन कही है दूर आपे आप परपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जात एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप तो रहे जो किछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप कला करतूत अतने की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गतमित कहीं न जाए दूसर होए तासो जी पाए तिस ताकि या सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस पर साथ सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप

दास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत

माने, दुख रोग बिनसे पे परम, साध नाम निर्मलता के करम, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

राम नाम तन संचवै साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर

हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनके उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राम।

पव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

प्रीत हर नाम न जपें करत विपरीत पर त्रिय रमें बकें साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन

मन में चित में पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक इहो संजम।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल इहो धर्म। श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी, तेते साध कृपाल, नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, अतित उदारण मन बसे, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दे।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसे दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरुमुख ब्रह्म।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख पूज।

था। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उधार, सब कार्य तिन के सिद्ध हैं जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले

आई खुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिनकी तीस पार लगाई गुरमुखानो।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दाता।

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविख कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलक पलक मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जहां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगड़ आए, ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे देव जाए, नानक दोही श्री खसम आपे वरत है, नित कर कर देख।

ये सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम से आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो पड़ा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता।

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक पहला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड़ी।

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया हर वेखे सुने नित सब किछ तिदू किछ गुजा ना

तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सत्य की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पो कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच सच्चा सतगुरु अमर है जिस अंदर हर उर्धारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जित्ता मनमुख हारिया। गुरमुख जित्ता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पाव सी गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी। हौ आप सलाही सिर्फ सच सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई। श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जा

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी इक मन इक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे ओए अगे पिछे बह मोछ पाइन ना रलनी खोटे आरे। ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूर लैन पेडारे जे साकत न रखावाये लोचिये बिख कड्डे मुख उगलारे। हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौं बलिहारी तिन कौ जे अमदिन सच लवे जिन मन तन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, ना ही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लए छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत ओह पाप।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। कोई वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

पंजवा अब खद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंधे

नानक कौ गुर बख्शिया नामे संग जुट। श्लोक महला चौथा। तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सदिया सत्य दी पिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आन तपे पुत विच बहा लिया। पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लह।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कु बोल।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने सो होए।

के पूरे सतगुरु पावे, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे, सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे, विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुझ मिले तू आपे बख्श लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागत।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साध चै

मर भी न सकें मूल, वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब इक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खा दे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से ही वड़ पागे नाए विसरे त्रिग जीवना टूटे कच तागे नानक तूर।

सहजसा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तो वे, चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे, प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पूरी परम वजाए प्री मोहब्बत हिक तू,

उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए उधारियन दया सेव अमिता। श्लोक महला पंजवां।

सिख उबारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है आप साज सवारे पौड़ी प्रभ बेअंत किछ अंत ना है सब तिसे करना अगम अगोचर साहेबो जिया का परना हस्त दे प्रतपा

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक।

14। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साज पाथ काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गो पाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना मुए मरम को का कर जाना। हंस

0: इस पर चाय परच रहोएस गौड़ी कबीर जी।
1: जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गए मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए, कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड़, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हौ तप का हीना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसा।

हार चुके। जम से उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सुजन पे चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मान।

उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख से।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुरु शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मार है, मन को मार कहो किस तार है रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरे।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे सुख देओ, जियो एक

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरणा कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत। माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई।

कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है।

प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर्म।

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी तारी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

प्रेम होए। जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो मिल।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसार्यो रे हीरा लाल अमो

रहो रे, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मद रस लैत बिकारियो रे, कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे, तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे, कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे, गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआए गज बस परे, मन बौरारे अंकस कहो शीश, बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे, निरपै होए न हर पजे, मन बौरारे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा पर्या।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता सौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए जो संपै त्यों बिकत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया था, जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ आना, जत जत देख।

परम प्रगट होए नाचो। या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा, अब तो जरे मन

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न

बिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर ताक प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अच्छा।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, कहां डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तो

जोत्रे भवन तन माहे समावा, तो तत्ते तत मिलिया सच पावा। थथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा एहो थिर न रहावा, थोड़े थल थान

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन मिल

पाप निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राव। खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बहुर न।

निवारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग

आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजय विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरा।

राम कहत जन कस न तरे रहाओ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारी ले चरण बद्धिक जन तेऊ मुक्त भये हौं बल

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

आदि सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंज।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणी।

हर त्यावे हर त्यावे तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, तिनका पो सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी पगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे पगत सरान तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से पगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवन अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करें सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तुद आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाए तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदिया उठदिया नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, तित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मुंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुग

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम।

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दिसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए।

हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक हर राते रह समाए, एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाए, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कौ किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हो मैं परम न जाई। सतगुर मिले तहु मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निसारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा।

कोकरे। ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, हम दिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कह कह से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

मन आए नजर करे सा सतगुरु मिले सनमत नानक पौ जल करे हासा मेला पहला पंच पदे दुध दिन तेन पंख बिन।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरणी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए।

कीमत पाए, अष्ट दसी चौ भेद न पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, आसा मैला पहला, सेवक दास बहुत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा वरना कोई, साच नाम गुरु सब

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

ले सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

चौक दे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जन पंच राशी ता तीर्थ वासी, कुंगरू वाजे जी मन लागे, तो जम कहां करे मोसियों आगे। रहाओ आस निरासी तो सन्यासी, जा जत जोगी ता काया पोगी, दया दिगंबर दी बिचारी, आप मरे अवरा ने मारी। एक

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरडे तन साथ पछाणिया सहज सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सीधा।

कह कोई जात स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे। साध सहज सुख रस कस्त जियले, कापड़ छोड़े।

सूत पोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, त्रणवे नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे। मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

हिंसा के मां हंडावो, जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत में जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस कोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूर नादं। पक विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं, हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

होए, गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर, जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा

हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरुमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमण मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा दो कूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा, पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुरु गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुर ते साच समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जेसो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसाद।

पर जलता रहे, गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जीव आप वसै मने आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवा काफी मैला तीजा, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाने सतगुर मिले सत सो जी होई, गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई, मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई, गुर कृपा से मन वसे ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइये गुर विचार, बिन नामे जम के वस है मन मुख अंध द्वार, हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई, हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई, हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू करता सच्यार में दासाई,

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

जाए वडे पाग गुरमुख हर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वडा वडा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत तत कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊंचे। नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मेला चौथा। हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो। नाम रखो गुरमुख मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा। नाम लाहा ले गुरमुख बिकता, नाम बिना पुष्टि मोह अंधा। सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागी। नानक गुरमुख नाम लिव लागी।

तिन। हथ कर कंस बजावे जोगी, थोथर वाजे बेन। गुरमत हर गुण बोलो जोगी, त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश, जुग जुग हर हर एको वरते। तिस आगे हम आदेश राओ, गावे राग पाक बो बोले। एहो मनुआ खेले खेल, जोवे कूप सिंचन को बसदा। उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पहले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब तो मेले पंच सत दायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन।

आपा जय जय करे सब कोए आसा मेला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाए।

आए आते हर अपरम पर करता हर आते बोल बुलाए से संत तले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

हर अठवां के काफी महला चौथा आया मरण पुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुर पूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के काल तुरु

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मैला चौथा जन पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्चार मैल बुलाया रहाओ। अंतर नाम निदान गुरमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ है गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

हम हर दिन खिन पल रह ना सकू रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सकू हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण, पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हो हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर दिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखा।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सति कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम सतगुरु राखे जे कर हाथ, ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा, आसा मैला पंजवा, ससू ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साद पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया। महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रैसो राति तन सुहागन।

आमर नौखण जीते सब थान तनंतर तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास पर था के सिमरत वेद व्यास जय बैसो तै नाले बैसे सगल पवन में सबल प्रवेश है होछी शरण पया रह न पाई कौमी ताहो कह कह जाई सुनो उपदेश सतगुर पे आया गुर हर हर नाम।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा। परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो मन लपतानी। सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय कठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विश्व सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चलचीत। पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, ते सौदा गुरमुख किने।

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीसे, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन न पतियारा।

वस्त्र भी पोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पर दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिसै तिस सर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटती बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत

बिस्ता अस्त्र रट परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे।

तब अंत न जाने पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूद जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर कातान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कह अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुरु तन पूरा पाया ऐसा हर तन संची है भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ करकत हो न जाए रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सच्चा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

कर में वक्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच उमड़ता था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, भगत पंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुरु दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा मेला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

साध संगत निर्बुद विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तांते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा महला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कस छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी।

आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौर संगत फज केवल नाम, संग जाम लाग और जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तब संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रा

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

ठंडी ताती मिट्टी खाए ओह न बाला बूढ़ा पाए राव नानक दास साध सरनाए गुर प्रसाद पाव पार कराए आसा महला पन्नवा सदा सदा आत्म प्रगास साज संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांत सदा सुख पावे किल विख जाए सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर पेटे पूरन पार ब्रह्म दूजे करके चौथी।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर इहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछे तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अगद करे सास सास समारे मां को है अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप न कमावे तत शब्द न पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद क्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन महामोनी मगन प्रेह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काबू बात है आगे ठोर न पाया रहा किस पया निंदक बपुरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जय कोई न रखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम न सुने डोरा रहा माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

ना छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दा बिरस गया तत्काले। सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले। आसा मैला पंजवा, उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे। पंच जनाले वसगत राखे, मन में एकंकारे। तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब

राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत पूर तन लावे मन तन अर्थ तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा।

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो राव तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अदा।

पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया, राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे, कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना हो ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार दाखरो संजम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रव नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा कर सतम।

निर्वाणी आस पास दिखुआ के कुंतार बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन।

जिनकू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाये, यो स्थान गुरु ते पाये, राव दूजा आसा मेला पन्नवा। कर में सुख बार फुल सूखा, हर सिमरत सगल बिना से दुखा, सगल सुख जातू

दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सात सब ज्ञाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मैला पंजवा जहाँ पठावो तह तह जाए जो तुम देहो सोई सुख पाए सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त।

चल तो हरे हर गाय श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन हुए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाय सो जन जन की वाट न पाई है आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सतगुर का सच शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अंदिन चीना। आशा मेला तन्यवा, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंत माने। दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट कुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभ नानक नीचे लागे। आशा मेला धन्यवाद, एको एकी नैन निहारो। सदा सदा हर नाम समारो,

के सूत पर होई कट कट अंतर रविया सोई ओ पत पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आशा मेला पंजवा।

किल बिख बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ। प्रप के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाई।

से पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा। गुरु पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सकामा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा मेला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वस्या हरनामा, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन को आया, अस्थिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहु नानक जो प्रभु शरण आए, इहा सुख आगे गत पाए। आसा मेला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा, शरण गई प्रभु गुनी गहेरा, रहाओ तू मेरा जीवन तू आधार, तुझे पेक बिद सह कोलार, तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मेला पंजवा, रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कम कर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद कली बनी, जा के गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत। कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ, द्रुम की छाया नहीं चल ग्रह बांधिया। काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय। नानक जीवे हर गुण गाए, आसा मेला पंजवा। दो तुके नावा, उनके संग तू करती केल। उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लो रहे।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब बिथाती, ओस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

ना हमको तृष्णा, जा ओ निर्मल ता हम जचना। हम किछ नाही एके ओही, आगे पाछे एको सोई। नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पाठ कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए। पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान। सरई सुहागण जो

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

दे। अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार, होए रहे सबकी पगछार, संत रह सुनो।

हर परे पंडार, कोट ना आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोए, नानक पाकी परम गत होए, आपा कर सतम।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हा, दृष्ट देख जैसे हर चंद।

फरजादे जस मीठे साध लुभाए झूठ तंत दुर्गा दे काम क्रोध अर लोभ मोह ते इंद्री रस लपटा दे दीप पवारी पुरख विराते हैं बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आके।

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा

महाभिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे जन्म पवनते नरक पड़ते तिनके कुल उधारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट। तू ही मोहिना कारण करना कारण करना। एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन। नानक सुख सुख सोएना आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला। रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

गुण रस रस गावे। एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा। एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलतिया। आशा महला पंजवा। कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। ओहो निहो नवेला अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय इहो मन दी जय।

जाए। प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोभ बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी

हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान तज

मन बहुत प्यास लागी, हर दर सुनो दिखावो, मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए, गल लाए, आसा मैला पंजवा।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, अमस्यों तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन पराना रवयो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सबको तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया।

नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तब

सेवा सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, पार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लखे।

आए सोच तानी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुखदासा रहाओ जग मोह बांधा बहुती आसा गुरमति इक पै उदासा अंतर नाम कमल पर गासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रिय जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बारों हो मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अतत कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार, अटल अछल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना पारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख दिन पै पगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख होए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग स्यो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को तावे अवगण तोवे

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नाम मेरा ताहर गुण गाओ गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम बस्या।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ इहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन तर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई इहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर

ग्रास इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख एव मन भक्ति जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी एव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन गासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुर राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनिक कामनी हेत गवारा दुखदा लागे नाम विसारा जिसको बख्शे नाम जपाए दूत न लाग सके गुण गाए हर गुरदाता राम गोपाला जो पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक राया अवर न औखद तंत न मंता हर हर सिमरन किल विखानता तू आप पुलावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा धार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा अमृत पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर शब्द जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाद पर पुर पार रहे मन माही तुम संसर अवर को नाही जाकी भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज ध्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वछल भगता हर संग नानक मुक्त पए हर रंग आसा महला पहला इक तुकी गुर सेवे सो ठाकुर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार बंधन कर्म तर्म हो किया बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए बिन हर भगत न कविताए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन बोत सरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो कारदार मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान संबोली हरमा।

राह में तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुरानी, एक ना पेरण।

जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मैला पहला कर अठवां अस्त।

होई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो।

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें।

एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे, गुरते दर कर जानी है।

गुरमुख नाम से आई है मन मंदिर पी जय रहा हो। कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाने गुर के शब्द समाई है परमार्थ जाने। यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभ आई गुरमुख लोभ निवारी है हर्षो बने आई। कल्लर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाही है सतगुरु शरणाई। मन मुख पत्थर सह

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावई।

पाले, गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जम्मन मरना आखी है तिन कर तय किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, साई कार कमावनी तुरकी फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी।

पड़त दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमा

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूरो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाग सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

मेरे थाना पुर हाथ वड्याईया पाने पथ पाए साचो दूर न जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपके हरे वेखे वड्याई गुरमुख हुए निहाली।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुकम रजाई। हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा कुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ।

पावे सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए, गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पग सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए, नानक साच कह विचार, हर का नाम रख।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधिन पोगे हूँ मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूँ मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत को

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जा नजर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, हासा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कह न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पन।

हंसोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जो आई कर दर छोड़े अपना पर कर झूठा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई, नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई, हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ, बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई, नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

बोले नान वे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिंगार सदा रामे फिर अपना।

सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चै अलख अपार, सतगुर सेवन आपना सच्चै पाए प्यार। सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावना अंतर।

आप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

आए बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर जिनकी ते तिथे न जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाजे।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल है।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिंगार। कर ही सो फिर पाया सच्चै शब्द विचार, अवगण गुणी बखसाया हर सो लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवै सहज सो सच्चे माहि समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन।

है सच निर्मल मन वसाए सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए फिर सेती अंग दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए नानक जे सुख लो।

बेटिया सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है गुर भक्ति मन तीर, जितनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम वसे हो मैं दुबदा मार, भगता की

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए, रहाओ इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दी।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहा दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलियो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए सब जग चल तो पेखी है नेचल हर को नाओ कर मित्राई साध चो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद

तस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न

गोविंद गर्भ पया कर पांडे जिन आवि साजी चारण वाहे तही किया कग्गे काल सेवक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे समकर जाने इन विद साहिब रमत।

पंडित आप सिया छछै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचै।

हारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ हो आसो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा।

कंत ना कब हूं मैं मिलिया। पप्पे पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया। देखे बूझे सब कुछ जाने अंतर बाहर रव रया। फफे पाही सा

गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे गुरुमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय।

ममे मत हिरलई तेरी मूड़े हौ मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

तन पिरे मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिर के सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलोनड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादी है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाणे एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कंपै।

नानक हर की भगत ना छोड़ो, सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल, साथ संभाले राम। अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी, दर सच्चे प्यारो। आवन जावन ठाक रहा है, गुरुमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई। नानक नाम रतन प्रगासिया, ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम। मन तन रव रहा जग

हार जियो ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन इक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

गुरमत हर त्यावे, नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा, सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी, हम दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा, तह तह हर तेरे नाले, मन से आनप छोड़ी है,

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्भ लागा जाए मुग्ध मन।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहिसा गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर परचय गुर परचय।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, माँ बिखम जम पंख दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

हर हर कर्ता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जप

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिए।

सुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आवन जान जियो। आवन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वड पागी हर रस पाया। से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगे।

अब क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजुद जोध बहु कीने, विच हो मैं पचै पचाए जियो। दीन दयाल गुरु।

कलम को हर किया पग पै खिस किया पग चौथा टिके टिकाए जियो आसा मैला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगाम जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक पाग पुराम जियो तुर मस्तक पाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगति हर नामे हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई।

आसरे में खिन खिन पग तोवे जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रत्ती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन भाई हर रस निरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर न कोई जियो अवर न कोई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया, निक आप लुकाया, मत जम पकड़े।

रागा समेला तनिमा छंत कर पहला अणगो अणग घना मैं सो प्रभ डीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या।

सारे सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूर वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर कट कटे दीठा राम राजे हर कट कटे दीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभु पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आशा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इहो मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पावनिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावनिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखिए। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी तेह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय कोप करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी तां जिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक प्रेम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पावन पतित पुनीत नाम

है सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहु करे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नान पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर विद आप बनाया जय जय संत अरादे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर विद आप बनाया आशा मैला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

संत मिलो संतन के संग मोहे उदार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न पावो शरण पावो करुणा में प्रब करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु रात नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे हो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट कारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारी उधारे पगते संसार कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन वे अंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही नेको पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भय राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा पट पट वासी आप विरले किने लया जय कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसर्या ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग पीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संगुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुड़ गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिनवंत नानक रंग

सुख सहज सर से हर नाम रहसे। प्रभ आप कृपा सहारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिन से आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा, उठ वंज बटा उड़िया, तै क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करे पाप अमित्या, तन पसंद तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया।

गर्त पया क्यों सरिये तारी तन दुहेला पया छिन में खसम चितना आयो दुखा सुजाई गणत नाही किया अपना पायो गुज्जा कमाना प्रगट हुआ ईस उते फुहारी नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाए कबू हर संत हर की शरणी आशा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावो सहु आपनड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सुरैणी रावी है सास सास चितार जीवा प्रभ पेख हर गुण गावी है बिरहाल जाया

बधाई ने अंत जाई पाया बिन वंश नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत तहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनुग्रह राख ली ने मोह ममता सब तजे गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सरस्वा

संग देखे कर्णहारा काए पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। वल वंश कर उदर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है। शिव साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिय प्रभ एक करण हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्बस प्रद एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समाज।

कमला प्रंपीत कमला प्रंपीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रेय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात।

ना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सनमुख सहबान सनमुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अलपीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अपतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सुख में।

सुंदरतम प्राण सुंदरतम प्राण हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राशतमान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज है की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा

चेत छुटे तिलगु आरजो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कौन आन सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लग करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चल साओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी।

इकना उसमें करे विनाश, इकना ताने कड ले, इकना माया विच निवास। ये पे आसन जाते जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए है जाको आखरे परदास पौड़ी। नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया। थाउ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चा लिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया। लिखना में करम बहा लिया श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवजग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पप पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जन पाके वश किचना ही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सुख सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने भयो नानकता का दास।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिम्मल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओज आवे आस पर जाहि निरासे कित फल फिक्के फुल बकबके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सबको निवे आपको पर कौ निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुक्त ऊठ बेफूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जले न जाए तन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाह पत्ती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूटे सपूत। महला पहला। तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक होवे निदारी तग न तैरी तग न अखी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाई तोती टिक्का तय जप माली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा अपने कतेबा संयम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहां तरंगा। महला पहला। मानस खाने करे निवाज चुरी वगाए तिन गलताज

का कड़ी कार ऊपर आल बैठे पूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देव डिवाइया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नगर पट्टी जे करे।

सोए पौड़ी तुरपलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप मालिया लाए बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर

का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल अखर तीरथ जेना।

उतरे नाही मैल, जिन पर अंदर बाहर गुदर के पले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना, दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल, दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी, आपते ही करना कियो कल आपते ही चैतारी है, देखे पीता अपना तर्क पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी।

कबीर जियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मुहे समझाया। देव करो दया मुहे मार्ग लावो।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम।

लुंजत मुंजत मौन जपा तर अंत तव मरना तासे सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाते कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तव मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सोबासक चंदन अंत तव मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो रामे जम्पो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए।

एक चुके संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहा। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब संजोई। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तप ना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन सुध

गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलदियां नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए लै न गयो आई तलब गो।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन राक्षन को दिया मुगद कहे तन मेरा जम कर बंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरह निवाज गुजारे कलमा।

आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्तरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर।

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पे दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेहि रावण कर खबर।

ज्ञानवासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कतमू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत।

बड़ पाव हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेती सुजाना, कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली देवर के बिह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम बिसार हो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं देखो, ये दुख कासों कहो रे रहाओ। बाप साव का करे लड़ाई, माया सब मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हु न पार उतार चरायो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा।

तेरे अब खुन रूप न होई, ताजा तन साज सब थाता राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरी।

आ गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघार है, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ बौरे जो दिल में खबर न होई।

गुप्ता ही रा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई ऐसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह के ही है बुरी अब की स्वरूप।

अब की तरह रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया ना हो ले राखियो राम जनिया ना हो इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे।

हाँ, कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतना पसरे ताना।

कह कांसी मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, सत ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक कतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हारंबे ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहा बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से त्यावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहा बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक।

का मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जमकी फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम।

आ जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दग।

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ,

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपरे जस

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत।

हर हर हर हर हर हर हरे, हर सुमरत जन गए निस्तरे, रहाओ हर के नाम कबीर उजागरे, जन्म जन्म के काटे कागरे।

माटी को पुकना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहा। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनुपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघानी मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे चेते बैठ गया। कत्त कूंजा चेत दो सावन बिजलियां, सियाले सो

काम से आई है, बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखा लिए जे मन तो वह कोई, झूठ लह जियो मांझी है मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आईया।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरे दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये। जे लोचे सब कोय, पूरे की पाल विचो निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाई।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोको गोविंद।

मन मोहै, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सुख लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। हो दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सबास।

तू पाए साकार आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

हारी अंकर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। असत मज्जन कर स्नाना ब्रह्म आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परदासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन।

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्य हर खोका खावो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला। नानक दास उन

आप उठापनहारा आपन हाथ मतात स्यानप काहू काम न आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात सहाओ। देश कमावन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास होए।

कर आया कल कलेश मिटे छिन पीतर नानक सहज समाया गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती सो अपने दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ कित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया तै पंजन हर राया साध के चरण तूर जन बांछे सुख नानक के उपाय।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदव सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

राम निधान सतगुरु दृढ़ आया दिन सुना आवे जाई हर जप माया बंधन टूटे भय कृपाल दयाल प्रभु मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

नानक को प्रभु पूर रहो है, एको जतर कथा गुजरी मेला पंजवा। मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु नायो, जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभु को भगत वछल बिरदायो, करे प्रताल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो, सन परयो नानक ठाकुर की अवैदान सुख पायो।

कहो नानक तिस गुर बलिहारे, जिन सबका किया उधार गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत तिनका बल है थोरा, अनुप रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहा। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक।

और चुत चुत वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, दिनों करो कर जोर, नाम जपे नानक दास।

0: चरण कमल संगराज सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा सार।

विसरत कब ते अनेक जुगत कर कायो, विसरत प्रभ के ते दुख गनिये महामोनी खायो। करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो। गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक, कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक। करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही, मुक्त जुगत रवाल।

रहया सोए, कोट जतन उपाव मिथ्या, कछ न आवे काम, शरण साधु निर्मला गत होए प्रभु के नाम, अगम दयाल प्रभु।

दे सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग मेरे मन जाप प्रभु का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल पाओ राव साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रभु दयाकारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभु जाप गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभु ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साद बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम सास सास ना

अटल पदवी नाम सिमरन, दृढ़ नानक हर हर शरण, गुजरी मैला पंजवा। अहं बुद्ध बहु सजन माया, महा दीर्घ रोग, हर नाम औखद गुरु नाम दीनो।

कलेश मिटे तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पह

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं वित्तज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूप

जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभु नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंत

ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पे नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक अमर।

गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताएं बिन हर भगत नाहीं।

सोग विजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

गुर शब्द हर रमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित्त वित्त ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म ब्याद।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यों बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहा सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर के पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मनमुख का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन।

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सब सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पाने।

आप वड्याई देवे पौड़ी, माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोये हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विकसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरु स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुरु सो तन सौंपिया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर ना।

केसनो कूड बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए।

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर।

हर सुख दाता मन वसै। हौ मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी।

गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा, सत गुर जिना न सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया, कित आया संसार। फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़ी, भगत सच्चे दर सोंदे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए। हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए। बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा, कल युग में नाम निधान भगती खटिया, हर उत्तम पद पाया। सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया। विचे ग्रहे गुर बचन उदासी, हों मैं मोह जलाया। आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया। ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया। जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, ज्यो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे, दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नावो दै खुआया। जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ वधाया। छादन भोजन ना लैही, सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी, माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा। ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन, जिन दूजा पाओ प्यारा। जम पुर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा करे।

आई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाहो वाहो करें सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर नामनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद हो वह मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए।

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाए, हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाए, हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित लीजै, हर के तख्त बहालिये।

बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

जै पाए खुआए जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यो चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समा।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनों कृपा कीती करतार, ओ कुचज्जी।

लखनी पर हर छोड़ी पतार। पै पै मल कटी है निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर। पै विच बैसे पै रहे, पै विच कमावे कार, कैथे सुख वड्याईयां दरगे।

गुरुमुख प्रगटैया तिथे शोक विजोग ना व्यापे अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पए अचिंत हर तन ने चला।

गुर आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर देखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम कादिय विरले के ईके महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत नित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अठ सठ तीरथ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किछ जाने जान बुझ विचारदा अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा जिसनो लाए सच तिसे उदारदा जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा सदा अपग दीवान है हों तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना सब फल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशया तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन के संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ ओथे जापिए मन को होए संतोख पुखा त्रापिए जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगै ना मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच ना सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

तेंदे सिमरन हब किछ लदम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन प्रसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सब आया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल सात संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना कीचई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपी

अमृत नाम बिघन न लगे कोई जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन के गुरु मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही पौड़ी। वाह वाह सृजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप। दया तारी समरत चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप। कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप। तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभु हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों तेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मही अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए। पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसरै नानक रवि है नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़ी है फौज पानी हाठ पंचा जोड़ी है। दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है। त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है। गुर पूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटिया पूरी हो वै जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया। नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ। पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया। महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्यादिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन उठा सच समाहरा। तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना।
नाम तेरे कै रंग दुरमत तोवना।

अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुकम तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड न पाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही ना होए कट्टे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुंजै कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर।

मुख तब कैसे गुन गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो, परमलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कवने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध तां बच रहे

हूँ और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदें बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

0: बेसवा जोन वल वल अवतरै।
1: अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै,
0: सूकर जोन वल वल अवतरै।
1: अंत काल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै,
0: प्रेत जोन वल वल

पदा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिम सत आद पावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

महला चौथा कर पहला। सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, जो तुम राजस कहके गुरमत तिन मुख पास सुभागे।

हर गुण गावे हौ किस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी, हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्म ही पूर्यारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यो पावे क्यों राखो स्वामी, जन नाम शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी, ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है, किस नाम परयो है कपटी रहाओ, जिनका हृदय नाहे हर स्वामी, तिल बिगड़ रूप बेरखती, ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिना साध जना पग चकती, नानक पतित पवित्र मिल संगत, गुर सतगुर पाछे छुकती, छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर पूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चितलाई, प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे, सदा सदा हर त्याय रहाओ, अंतर एको बाहर एको सब में एक समाई है, काट अब घट गविया सब खाई, हर पूरन ब्रह्म दिखाई है, पुस्तक करे सेवक मुन के ते, तेरा अंत ना कतहु पाई है, सुख दाते दुख पंजन स्वामी, जन नाम सद बल जाई है देव गंधारी, माई होन हार सो होई है, रात रहो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोई है, कब मुँह मैल परे अभिमानी, कब साधु संग तोई है, कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नानी अलोई है, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिन पर साग सुख सोई है, देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभिमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कहे सोई पल मानो, नाहे ना का बोल करत, निमख न बिसरो किए मोरे ते, बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूरन प्रभ करता, मेरी बहुत इयान उपजत, निर्गुण करूप कुल ही नानक, हौ अनद रूप स्वामी परत, देव गंधारी मन हर कीरत कर सदूं।

कभु सुख आयो कह परम विनाशी कृपाल हुए प्रभु जभु कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभु देव गुणारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभु जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग विदार्यो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विसार्यो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधार्यो देव नारी मन सगल स्यान रही कर्म करावन हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ आप मेक पय शरणाई इन मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही खिन में खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहु जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पर

अज्ञान अंधेरा संती काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ स्यान तो संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंदारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एव निधाना, जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम निसाहा। देवगंधारी महला पंजवा, मन के अंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशे सोचारा रहा। जिनकी आति सिमर प्राणी, जियो प्राण जिन पारा, तिसे त्याग अवर लपतावे, मर जन्मे मुग्ध गवारा। अंध गुंग पिंगल मत हीना, प्रव राखो राखन हारा, तरह करावन हार समरथा, क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी महला पंजा, सो प्रभु नेरे हूते नेरे, सिमरति आए गाए गुण गोविंद, दिन रैन सांस सवेरे रहाओ, उदर दे दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपे रे, करी न मोहत न चसा विलंब हो, काल नित नित हेरे।

तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर

पूर्व ज्ञान न पाई है, अनेक प्रकार सिर्फ बिल्ला से मिलत नहीं गोसाई रहा। मोह रोग सोग तन बांधे हो बहु जोनी परमाई है, टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है, संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया, हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए, जो सब ना करे उधार। इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा, अपने सतगुरु पै बिनो कहया, पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहा। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया, कर मस्तक तार साज निवाजे मोहे दुष्ट जो खया। परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया, कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर धरया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे, रहाओ सर्व पाप राख मुरारे, आगे पाछे अंति वारे, जब चितो तब तुहारे, उन समार मेरा मन साधारे। सुन गावो गुर बचनारे, बल बल जाओ साथ दरसारे, मन में राखो एक असारे, नानक प्रभ मेरे करने हारे। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, कर संतन का चेहरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरनी, निष्बासर दर्श पाओ, तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रही है, एक आधार नाम तन मोरा, अंग नानक एह लही है। राग देव गंधारी महला पंजवा, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए, छोड़ न जाए सब ही संगे, अंदिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कठु जाए, अनक अनक पांत बहु पेखे, प्रिय रोम ना समसर लाए। मंदर पाग सोग द्वार है, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माने, गृह प्रिय सीते सद थाए। देव गंधारी महला पंजवा, दर्शन नाम को मन आछे, प्रम आयो है सगल खान रे, आहे परयो संत पाछे रहाओ। किस हो सेवी किस आराधी, जो दिशते सो गाछे, साध संगत की सरनी परिये, चरण रेन मन बाछे। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई, महादुत्तर माया छे, आयो पयो नानक गुरचरनी।

हारे कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहा हो साध संगम गुण गावे हर के।

बहु व्यंत अत बड़ो बहारो हाहा नहीं अगहू चा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को गुरु शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो राग देव गंधा।

मद माया के पयो बावरो हर जस ने उचरे तर पर पंसी जगत को ढके अपनो उदर पर है स्वाम पूछ जो।

निर्भित रचना जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव गंधारी में।

से अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहुने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। इको अंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल अमृत अजूनी सैभन गुर प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पंजवा।

करिया बहु बंदे करिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पचहारे और बहु लोग सियाने रहा छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह तांको विभारे अपनी माया आ

निरंजन जी सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण ताहीं चित लायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया, हर प्रब गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रब पाया, गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी मन सिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरुमत नाम प्रगासे राम हो हर बाज उडीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कमल।

लिए गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आएंगे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत वित पाया राम गुर अमृत

अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदगी जित जपया पाप गवाके राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदगी जित जपया पाप गवाके राम। पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदगी चहु कुंडी चहु जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदगी हर अमृत हर शरणा तेरा।

हाँ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए बिक औजल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया।

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आ रहे राम, पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

ऐसा हर एक सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब तू साहिब वड्डा आराम जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ करदा आराम गुर सेविया है गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छड़ा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकराई है राम मन मुकरा हर

चक्का पहला बिहागड़ा महला पंजवा संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर

मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके तिस गुर नाल सुनेहा, जन कहे नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

खान पान सिगार बिरते हर पंत बिन क्यों जी जिए। आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकिए इक तिले, नाम पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रियो संग दर्श ना पाए राम, अवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना त्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

उतरे हर जियो करता पुरुष मुरारी राम। दुख रोग न पौ व्यापे जिन्नी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पावजल पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए।

हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम, हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर जिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल सब किछे प्रभु मिले अत प्यारे।

नानक सर समरथ स्वामी पैज राखो मोरे, जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर सरी।

सतगुर कै तै पन ना करो रह अंक समाए। अंदिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सचमत है, अज्ञान अंधेरा जाए। सब किस देखे किसे का, जिनकी आतन साज। नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया, जदों आपे थाट किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया। तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया। फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया। आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे

कथिय ना पाइए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही बह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथी जय आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैर च निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुरु पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे ना रजै, तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या।

पौड़ी। आपे अस्थर तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस दी तैज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा, नानक बिन सतगुरु के

लायो सतगुरु का पाना चित रखो संजम सच्चा नेहो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया

सो सब किस पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

पौड़ी जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप।

नानक आप अमयो है गुर कृपा के रहा समाए आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा

तुर खसने का हुक्म पाया वी सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभाल दम न बिरसा जाए जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाल सियाना आपे मोनी।

वस, सब कुछ तेरे वस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ

काम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसे तेती जोग न होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए पौड़ी।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण रवे हृदय नाम वसाए, अवगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए, सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किछु न जाए, नानक आपे वे

साचे नाए रते बैरागी पाइन मोख द्वारा। एक को सच वरते सब अंतर सब ना करे सतपाला। नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला। बड हंस महला तीजा गुरुमुख सच संजम तत ज्ञान है। गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जाप पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच

ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए। रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए। कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर। नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया। वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए। हौ में विच सेवा ना हो वही, ता मन बिरखा जाए। हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन में ता हर मिले ता

कोई हों मैं विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए हों मैं विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुरु मिले हों मैं गई ता सच वसिया मन आए सच कमावे सच

अपने गुरु को जाता रहाओ। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया। हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। बडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ।

ए मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे। मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा। मैं निर्गुण बस

मैं मन वड्डी आसरे क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर पुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा से आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी सितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावेरा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत जोती रली है जो हर प्रभ का

जो हर हर कथा सुनाए, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम से आवा, गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा, गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा, नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जिस आप विखाले, जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर तेती।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्त है जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा। करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वढ़हंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सत मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वढ़हंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को सब

तिने कुमजाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राशा वड़हंस महला पंजवा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा।

विस्मा रहाओ। तुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मन हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन।

साध मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे जे सो खेल खिलाए बालक रह ना सके बिन खीरे मेरे अंतर भुख न उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेसा मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली जिचर मैं

सच तुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा हुए।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाए गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले दिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

नाता सो प्रमाण सच कमाइए, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए, जिथे जाए बइए भला कहिए, सुरत शब्द लिखाइए काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय है आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पिख पवा।

सित चढ़े सवाया, एक करम तरम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जब

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

बंके लोएन दंतरी साला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप भाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक।

गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजै नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजै गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें पोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मन मुख मोही जम काल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरिया अंतर तेरे निदान है बाहर वक्त ना पाल जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मन मुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई बिन नामे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौ निद पाई मन मुख माया मोह व्यापे दुख संतापे दूजै पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वड पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नहीं चल

मनमुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर आपना से पूरे वडभागे। वडहंस महला तीजा, रतन पदार्थ बन जिए, सतगुरु दिया बुझाई राम, लाहा लाभ हर भगत है, गुण में गुणी समाई राम। गुण में गुणी समाए, जिस आग बुझाए, लाहा भगत है सारे, बिन भक्ति सुख ना होई, दूजे पथ कोई, गुरमत नाम आधारे, वखर नाम सदा।

छोटा एहो वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम बहु वधे विकारा सहसा एहो संसारा बिन नामे पत कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई गुरु प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौमे माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साथ शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम। माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरुमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा। गुरुमुख होवे सोई बूजे, सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले, होर के

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वस

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई जिन सृष्ट साजी, सो कर वेखे तिस जेवड़ अवर न कोई, मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मुहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर सरनाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो दिहो वडाई राम, रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाए, जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया, कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुर सिख ली त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई। हर आपे पुरुष निरंजन सोई।

फल जन्म किन बिछा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदाता राम, हम पूछे सतगुरु पास हर बाता राम, सतगुरु पास हर बात पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे किन करे बेनंती, गुरु सतगुरु पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समाप्त कर।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनुत्तरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वट पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जने गुरुमुख जीतिया अकरो कढ़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुरु खाणी हर रंगे तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे राम पाया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम जित हर प्रभ जापै।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

ले जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुणे अमोले जगत उधारण आए तह बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सत गुरु बाणे श्लोक।

जन सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत्संग।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

बड़हंस है सच नाम उर्धार सत संग्रह है सद सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की करतार नानक हो तिन।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुरु।

उबरे भाई राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर से सुख नाही।

याद ना आया संध्या तर्पण करें गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुरु सेवे सो वड भागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए यो जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुर मिले ता

कोई बातें बात रखी हठ अपने जिस पावे किस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगे जापे से सूरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रै गुण माया परम पुलाया

जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वर्ते सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिज्क समांदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिए प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा

गुरमुख प्रगट होए सूरत मैला चौथा। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था पुथा पै, आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंटन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे रहाओ। आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप करे प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही सब तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे। आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जपदा पै, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सूरत महला चौथा। आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वनजारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुरपूरे मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, जब माटी बंद रखाया। आपे ही पौ पाएंदा प्यारा, बन बकरी सिर हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया। आपे ही आप वर्तदा प्यारा, पै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाएंदा प्यारा, सह लेंदे सब लवाया। आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया। सूरत महला चौथा। आपे सृष्ट उपायदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान। मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याय तू हर हर, बहुर न आवन जान रहाओ। आपे ही गुण वर्तदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बच कराएंदा प्यारा, आपे सच निशान। आपे हुक्म वर्तदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराएंदा प्यारा, आप दिवावे मान।

पाया छाप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जा

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां प्रम काटिया जाए। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम।

हर नाम समान, जिसकी वक्त सोई प्रब जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चासी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

जन नानक अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिखो के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी जा सब को पीता होसी। जो जो दी सह बड़ा वडेरा सो सो ठाकुर सी। निर्भव निरंकार पव खंडन सब सुख नर निर्देशी। हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सा लाही। क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता। तिसकी पूछ गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाए।

पूत के पाला सूरत महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार कोई सब आराधना पाई जिससे सब किछु हुए गुरपुरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त्र सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जनता ये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

हो बुझाई, सेवो साद गहो ओट चरना, ने बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित, तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई। सोग न व्यापे आप न थापे, साध संगत बुध पाई, साकत का बकना यूं जानो, जैसे पान चुराई। कोट पराध अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो, प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृह बनता, माया सन बंदे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहज।

नाम आधारा सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहो नहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक तो गुरु पूरा पेट्यो सगले दुख विनाशे सोरठ महला पंजवा सुखिये को पेख है सब सुखिया रोगी के पाने सब रोगी करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी मन मेरे जिन अपना कर्म

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरना प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुबाखिया गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राखिया रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वत्सल दयाला संता की पैज रखबा आया आप बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व

मेरे सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा, चौपदे

मेरे देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हों मित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट परादी तरयारे गुर।

पावत ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना से जन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ। अमलम स्यो अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लग

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु ताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। खाद संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुगद पै श्रोते हर नामा मुख

अंग मंगल विश्रामा, मन बाचत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम सागा, कहो नानकता के पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू।

साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो परम अंधेरा सज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाए जब तक समझम ज्ञान पत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया काकी पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले काकी जम की पाता पहु नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगाता सूरठ मैला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नान प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर।

मन वस्यादनासी, ताँ को विघ्न ना को उलागे, जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रब अपने जिन मन की छिप जाई, नानक दास ताँ के बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किच करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोभ मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हूँ मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न पाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अनद करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा, बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहाँ बताओ सारी, जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया। संतो कट कट रहा।

समायो सोरत महला पंजवा जाओ के सिमरन हुए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा।

रहाओ। सांत पावे होवे मन शीतल, अजन नाम कर तुखी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी। सूरठ मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ, रहाओ, विसर नाही कब हुए थे, ए विद मन में पावो, गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी, जन नानक कतह न पावो। सूरत महला पंजवा, जा के सिमरन सब कछ पाये, बिरती काल न जाई, किस प्रभ त्याग अवर कतराचो, जो सब में रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला, साध संग मिलना।

जब जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बरतन।

दर्शन पेटत भूत निहाला, हर का नाम विचार है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे रिद

दून चौनी दे वड्याई शोभा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला, जय जय तार पे जग पीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिर

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरत महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरत महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कह ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

पूरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया, होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जप अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रब त्याये, हर मंगल नानक गाइए। सोरठ महला पंजवा, सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी, हर की प्रेम पर

दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वडपागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जीवे से वडपागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम।

पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म विटो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाये साध संग मिल त्याये मन बांचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर चर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल।

सर्ब गुना निध गायो सर्ब गुना निध रायो रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

हर जियो निमाणिया तू मान, निकीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान रहा। जैसा बालक पाए सवाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पांती, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किसते आप सुनाये, कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बिनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा, दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख काल दिवाया, पीछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साच पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

जो तुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूरन जाके भागा। मिल साध संग हर ध्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर, मन चिंधिया।

बाना सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लोड़ा गुरु उबारिया अनुद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारे।

आ सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हरदास सुनी पवे।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी। हर हर प्रभु।

हर नानक साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रम।

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

हर काज श्रवणा बिछे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साधु पे।

अन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ जो कामी काम लुभावे, क्यों हर दास हर जस भावे।

जिसनों बख्श लै मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरनी पाई है दर्शन पेटत होत आनंदा।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राख है जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाख है। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सोभा।

आज काल कुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भज लै जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम, मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत, तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारयो, मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नामा, मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारा निंदिया रस रच्यो, राम भगत नह कीनी रहाओ। मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन, तन जोरन कौधाया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो, न उपजो कछ ज्ञाना, कट ही माहे निरंजन तेरे, तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारयो, अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर पज, नानक बात बताई। सोरठ महला नावा, मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेह सिमरत गनकासी उदरी, ताको जस उधारो रहाओ, अटल भयो त्रू जाके सिमरन, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी, तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद, गज ग्रहते छूटा, महमा नाम कहां लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरे पारा। सोरठ महला नामा, प्राणी कौन उपाव करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुरु जा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निद, जाहे जपे गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद बेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जा को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा, माई मैं केविद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन, राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नामा, माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत, के बिदरो को ताहे रहाओ, वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रजपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सनबंदी, सगरे तन

ओ संग छार सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

दर्शन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर शोभ ते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

वासा गुर कृपा जे नरको कीनी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हरजी को काम ना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरे मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

लागी। शब्द मन वेद्या मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमे पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेतै मनुआ ना डोले, पावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर ताड़ी लाई।

ते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई करम तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई।

काया कागद जे थिए प्यारे, मन मसवाणी तार ललका लेखन सच की प्यारे, हर गुण लिखो विचार तन लिखारी नानका प्यारे, साच लिखे उर्धार सोरठ महला पहला। दुत की तू गुण दातो निर्मलो, तू गुण दातो निर्मलो पाई, निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई, तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख, हौ पापी पाखंडिया पाई, मन तन नाम विशेख रहाओ, दिख माया चित मोया पाई, चतुराई पत खोए चित में ठाकुर सच वसे पाई, जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल जे मन हर्ष्यों बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, चूका मनो गुमान जल मल काया मांझिए पाई, पी मैला तन होए ज्ञान महा रस नाइए पाई, मन तन निर्मल हो।

वाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस नेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहार है जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सुहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

मन हठ कार कमावनी पाए बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा के कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पार।

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहे विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना।

रोग पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्यान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दारा अन बस्तर पूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हों हों करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता। रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे।

यह पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रति हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सदगुर का पाना अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहा।

सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग ना जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिक संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

आए फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी। जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया। से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए। पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर। श्लोक महला तीजा।

तीजा गुरुमुख चितना लायो अंत दुख पहुताए अंदरों बारों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख ना आयो अं दिन जलत विहाए कूक पुकार ना चुकई ना संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार।

सब राज सृष्टि काले नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी।

पवित्र हैं, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन हैं, से गुरुमुख सिख गुरु कह जाते। श्लोक महला तीजा, नानक नामों कुत्या

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

साथ सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी।

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिर कै पाणे।

सतगुर मिले ता पूरा पाया हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिनस परवात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना तू दाता दातार तेरा जित्था खावना भगत जना के संग पाप गवावना जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपे कपाही सतगुर का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा। मन मुख माया मोह व्यापे दूजे पाए मनुआ फिर नाहे अन दिन जलत रहे दिन राती हौ मैं खपे खपाहे अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे कोई आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभु साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभु पाया सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपे सिष्ट सिंधिया आपे सुनगोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सोदे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुरु।

बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई ओइले जा रे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई।

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते देखो निर्ख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम कन रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई।

मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया। जोहरी लो बरी नार संग भाई आगे सजन सुहेला, मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ, झूठी माया

आई बाजीगर स्वांश पहला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कट कट रही लुकाई जा को गुरु

हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार आ रहा हो, अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस अगोचर नहीं है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे।

नाद समायलो रे सतगुर पेटले देवा राव जय चिल मिल कार दिसंता।

तिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट

पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

नाही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन तीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहा वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तना फ्री मेला पहला।

पुलकार है। दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मलकोवे, पढ़या बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान। तना श्री मेला पहला हर तीजा।

पावे, अंतर प्रगाठ हर नाम ते आवे रहाओ। ए हर रंग गूड़ा तन पिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए, हौ मैं विच प्रभ कोए न पाए।

पड़े आई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक सास रते प्रभ आप मिलाए, नासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परजवी गोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवे तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पास मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साध है जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हौ मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गवार। मन मुख फूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख फूले सब मरें गवार। पर जल डूबे ना